मिल साध संगत पद केवल ना तो हुण साडे जुम्मे काम लगा ते असी किन्ना कनवादे हां। सत्संग जी यकीन करो मैं पुस्तक पढ़ के आप जी नूं बेनती कर रहा हां, उसने पुछना है जिंदगी का सफर हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। जिंदगी का सफर हौले हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। तो जदों उन पूछा जाके बेटा बच्चिए धीए वो भी ऐदा ही बुलांदा सत्संग जी मिठ बोलड़ा है साजन रब जी बहुत शीरी कलाम है। उन पूछना बच्चा तेनू आ काम दे के भेजिया सी कि भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ, तेरे खाते विचो तो कबूतर निकलिया नहीं, हुण की करा मैं। धीए बच्चिए तेनू भी काम दिता सी कि बाबे दे घर केवल नाम है, नाम दी पूंजी है, नानक के घर केवल नाम, इसलिए तेरे ते फर्ज लाया सी के केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की सरना। तैं किन्ना क कीता हिसाब ते सारन देना पैना, इसलिए अगे जिन्ना क कीता कीता आगे समझ चलो नंद लाला जो बीती सो बीती हुण तो ही लग पई है। मैं शायद अगे भी बेनती कीती होवेगी, मैं बहुत बहुत चिर हो गया ना तुहाडे चरणा विच आंदे कई साल हो गए ने, ते एक ट्रक सड़क तो लैके खड्ड वे डिग पिया, हुण उह चलण जोगा ने, खड्ड वे डिग पिया है, पर मालक की करदे ने उहनू टो करके बाहर कढ लैंदे ने, ठीक ठाक करके उहदे विच समान लद दिंदे ने, मंजिल वल उहदा मुंह करके ड्राइवर नूं कहिंदे चल वे बच्चा लै जा, हुण ट्रक ते बच्चा डिग्गिया होया सी पर कढ लिया वा। एन इसे तरह मेरी बेनती है सारे अगे हाथ जोड़ के जिन्हें कल तक अजे नहीं शुरू किया हुण शुरू कर लो, मंजिल वाल नूं मुंह होवे तां फिर तां यकीन करो कि मंजिल नेड़े आई का आई, हर कदम ते मंजिल घटदी जाएगी। अजे रुख दूजे पासे नूं कीता जाना होवे लंडन नूं तुरे होइए इधर लीड्स नूं फिर कदों आएगी मंजिल, नहीं आएगी। महापुरुष यही कहिंदे रहे है कि नाम सिमरन करो, भजन करो, परमात्मा नूं याद करो। जद महापुरुष अपना फर्ज निभा रहा है तो सानू भी करना चाहिए। एक संत महापुरुष तुरे जाते से उन्होंने चुराहे भी देखा एक बहुत काला स्या धुआं पिया है, धुआं पिया है, नाल चेते बाल के भी सी महापुरुषा ने भी देख लिया धुआं बिल्कुल अकड़ के खड़ा ते काला स्या नीला होया पिया। उन्होंने झट चुक लिया, महापुरुषा ने चुक लिया ते धुएं ने डंग मार दिता, जहरीला एडा सी पे पकड़िया पकड़िया हाथ नीला काला स्या सुज के एडा हो गया। नाल दे चेले कहन लगे बाबा जी महाराज जी पे इन रहन देना सी पिया, इत्थे देखो ना तुहाडे इसने डंग मार दिता तुहाडे हाथ दी हालत की हो गई है। कहिंदे बच्चो सुनो, गल सुनो, वचन सुनो, जेड़ा इहदा काम सी ओह इह कर रहा है, जेड़ा महापुरुष दा काम है पे चुक के रांभे कर दे, इत्थे तो कोई राग ही जांदा होवेगा को मंजिल ते तुरिया जांदा होवेगा ओहदा लड़ जाएगा, ना कुछ नूं दारू मिल सकेगा ना दवा हो सकेगी। जद ए अपनी आदत नहीं छड़दा तां मैं अपनी फर्ज क्यों कुताही करा। जे अपनी आदत नहीं छोड़े, उर्दू दा शेर, जे अपनी आदत नहीं छोड़े हम अपनी खूह क्यों बदले। इसलिए महापुरुष दा हर एक दा करतब है। कल नूं इत्थों अगे दर्शन दीदार करांगे गुरु दी सच्चे पातशाह रहमत नाल तुक कहीए ते कीर्तन दी संपूर्णता करिए। आदर योग मेरे परम आदर योग संत बीबी जी सुरिंदर कौर जी तशरीफ फरमा होए ने, बहुत भागां दी बात है। जिस दिन असीं इधर नूं आउण दी तैयारी विच सी ना मार्च विच तां भी सानूं दर्शन देण आए सन, ते इत्थे आके भी कल मैनूं पता लग गया कि आदर जो पिप जी भैण जी आए होए ने, ते मन गदगद होया है। हुण संगत दे दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न होया। गुरु सच्चा पातशाह जो इन्हां दे जुम्मे ड्यूटी लाई है ना मालक ने, तो ये निभा दे जाण, उहदा नाम जपा दे जाण। तो कहो सत्संग जी।

सेवा का मतलब शिव जी नहीं है। शिव शिव करते जो नर ते आवे बलद चढ़े डरू टमकावे बलद की जून च पैंदा है। मां माई की पूजा करे नर से नार होए औतरे ओ नार की जून च पैंदा है। तू कही आद तो आनी मुक्की बरिया काछ बानी इस वास्ते हिंदू अन्ना तुरकू काला दोवा ते ज्ञानी सियाणा जेड़ा एक तो बिना दूजे नूं मनदा ही नहीं। शिवा का मतलब शिव जी नहीं, शिवा का मतलब पावन मेनू वर दियो पावन। शिवा मेले शुभ शुभ वर मेनू बख्शो। केड़ा शुभ कर्म।

तेजन कब होना हारे ताल जो जाने पाशा ताल जो जाने पाशा तेजन कब होना हारे।

पर मोहे है, देश वार पर मोहे है, सब तन मन ते कब हुम न तरो। ना डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखो अपने ही मन को लाल जहां को उतरे, और सिखो अपने ही मन को लाल जहां को उतरे।

आन को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सब को, जग में जस और दियो सब को, मोगरे में मन दे तन दे सिर लो धन है सभी के लिए को, मोगरे में मन दे तन दे सिर लो धन है सभी इन्हीं को, जब्द जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, आग आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम परे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर, सदा संग नाही प्रभ दूर। कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। कहते

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहेब गुरु रामदास साहेब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जननासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए।

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सोए कत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए। कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए। कित संजम तोता जाए मन तो

सुख सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवै न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्री

सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहिंदे आ। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे उह सारी उम्र नस्सा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन होछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लियो मैं लाहा।

संत बाबा तस्वीर महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा है भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे कम करना पएगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना कम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवांगे कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे भाई बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने झट चरना ते मथा टेकिया गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करने सब विचार सत्य तेरा अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तू दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सिद्ध सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर्ज में सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरसा पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिंजे की तकना सरुजा
0: महला तू जा एक सच्ची की कोठरी सच्ची कब जबा एक नाम तुम्हारे एक नाम में करीबना एक नाम पाने कट ले एक नाम आया बिचन वाज ए पी आखन जा पे किसने रा नानक गुरु जाने जाको आप

गज के बोलना सतनाम श्री राज पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना आवे धर्म हालिया उथे सचो ही सच ने बड़े तुन वक्त दे जमालिया थाओ न पावन कूड़ियार मुह काले दोष चालिया तेरे नाए रते से जिन गए हार गए सुठगण वालिया लिखना आवे धर्म बहालिया।

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार बैर बिस्मार जी बिस्मार बैर बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार नागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खेरे बनाने बिस्मार तर्जी बिस्मार खाने बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार स्नोग बिस्मार बिजोग बिस्मार पुख बिस्मार पो बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार देख हादरा दूर देख बड़ान रिया बिस्मार नानक बुद्धन पूरे
0: महला पहला कुछ से कुछ सुनिए कुछ

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाए सी।

0: अपने दास को पैव सहाई सगल मनोरथ कीने करते
1: जी। आप जी ने बड़े प्यार नाल कीर्तन सुनिया और ये जो ताल है भानुमती आप इसको सुने दो तुखें और उसके बाद हम कीर्तन की समाप्ति करेंगे। बड़ा आपने अभी प्यार से गाया है सुना है, मुझे बड़ी खुशी है।

सो सात संगत जी हो, ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु